मैंने श्री घाटे के स्वर में संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं रघुवीर पांचाल और सहकारियों के स्वर में ये रचना।

रघुवीर पांचाल और सहकारी के स्वर में ये रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम की अगली हिंदी भक्ति रचना है अजीत कौर के स्वर में, रचयिता है प्रेम सखी।

प्रेम और सखी ने रची ये हिंदी भक्ति रचना अभी आपने सुनी अजीत कौर के स्वर में। कार्यक्रम के अंत में आइए अब सुनते हैं रविंद्र साठे और सहकारियों के स्वर में समर्थ रामदास स्वामी की ये भक्ति रचना, जिसके संगीतकार हैं आनंद मोड़क।

रविंद्र साठे और सहकारियों के स्वर में समर्थ रामदास स्वामी की भक्ति रचना अभी आपने सुनी, जिसके संगीतकार थे आनंद मोड़क। भक्ति संगीत का कार्यक्रम अभी आपने सुना, ये आकाशवाणी पुणे का निर्माण था, जिसे आपने सुना रागम 24/7 DTH चैनल पर। सुनते रहिए भारतीय संगीत, हर समय हर पल।

ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಉಳಿಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಹಾಕೊಳ್ಳಿ.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग अहीर भैरव में ख्याल गायन. आज के कलाकार हैं मोहनलाल मिश्र. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं समीर नंदी और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं रथींद्रनाथ चक्रवर्ती. तो आइए सुनते हैं राग अहीर भैरव में ख्याल गायन, कलाकार मोहनलाल मिश्र.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस मॉर्निंग वी फर्स्ट प्रेजेंट आवर

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग अहीर भैरव में ख्याल गायन सुन रहे थे। कलाकार थे मोहनलाल मिश्र। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे समीर नंदी और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे रथींद्रनाथ चक्रवर्ती। ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं राग परमेश्वरी में गिटार वादन। आज के कलाकार हैं देवोतोष डे। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं तरुण रॉय। तो लीजिए प्रस्तुत है राग परमेश्वरी में गिटार वादन, कलाकार देवोतोष डे।
1: यू आर लिसनिंग टू ख्याल इन राग आहिर भैरव बाय योर आर्टिस्ट मोहनलाल मिश्रा। Accompanying on the tabla, Samir Nandi, and on the harmonium, Rathindranath Chakraborty. This is Ragam, 24/7 on DTH, anytime Indian music. Continuing the concert, we now present our guitar recital in Rag Parameshwari. Our next artist, Devotosh De, accompanying on the tabla, Tarun Roy. Now, listen to a guitar recital in Rag Parameshwari by our artist, Devotosh De.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग परमेश्वरी में गिटार वादन सुन रहे थे। आज एक कलाकार थे देवतोष डे, आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे तरुण रॉय। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You are listening to a guitar recital in Rag Parameshwari by our artist Devatosh De, accompanying on the tabla Tarun Roy. This program was recorded and produced

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओं नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। कार्यक्रम के प्रारंभ में सुनते हैं उस्ताद आमिर हुसैन खां का तबला वादन, ताल एक ताल, साथ संगत है सारंगी पर मधुकर खाडिलकर, वायलिन पर पी श्यामण्णा। आइए सुनते हैं उस्ताद आमिर हुसैन खां का तबला वादन।

अभी आपने उस्ताद अमीर हुसैन खां का तबला वादन सुना, आइए सुनते हैं उस्ताद अमीर हुसैन खां का तबला वादन ताल रूपक। साथ संगत है सारंगी पर मधुकर खडिलकर, वॉयलिन पर पी शामन्ना। आइए सुनते हैं उस्ताद अमीर हुसैन खां का तबले पर बजाया ताल रूपक।

अभी आपने उस्ताद आमिर हुसैन खां का तबला वादन सुना। साथ संगत थी सारंगी पर मधुकर खाड़ीलकर, वॉयलिन पर पी शामन्ना। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब सुनते हैं अनुराधा पॉल का तबला वादन ताल झपताल। साथ संगत है हारमोनियम पर अप्पा जलगांवकर। आइए सुनते हैं अनुराधा पॉल का तबला वादन

अभी आपने अनुराधा पॉल का तबला वादन सुना, साथ संगति हारमोनियम पर अप्पा जळगावकर। आइए सुनते हैं विनायक फटक का तबला वादन, ताल रूपक, साथ संगत है वायलिन पर रत्नाकर गोखले।

अभी आपने विनायक फाटक का तबला वादन सुना, साथ संगत की वॉयलिन पर रत्नाकर गोखले। रागम 24/7 डीटीएच चैनल पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रागम 24/7 चैनल पर ये आकाशवाणी पुणे की निर्मित थी। आप सुन रहे हैं रागम 24/7 डीटीएच चैनल पर भारतीय संगीत।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है उस्ताद लक्ष्मण दास सिंधु का उपशास्त्रीय गायन. पहले प्रस्तुत है राग तिलंग में ठुमरी. बोल हैं सांवरे सलोने मोरे श्याम. तबले पर आपकी संगति की है हशमत अली खाने.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. In the program of Light Music, we now present a vocal rendition by Ustad Lakshman Das Sindhu. First listen to Thumri in Rag Tilang. The words are Saanvre Salone More Sham, is accompanied by Hashmat Ali Khan on tabla.

0: अभी आप सुन रहे थे राग तिलंग में ठुमरी, और अब पेश है मुल्तानी काफी, बोल हैं वाह वे सजन।
1: यू आर लिसनिंग टू ठुमरी इन राग तिलंग एंड लिसन टू मुल्तानी काफी, द वर्ड्स आर वाह वे सजन।

0: उस्ताद लक्ष्मण दास सिंधु का गाया मुल्तानी काफी अभी आप सुन रहे थे, और अब सुनिए मिश्र काफी ठुमरी। बोल हैं ना ही पड़े मोसे चै, तबले पर आपकी संगति की है हशमत अली ने।
1: यू वर लिसनिंग टू अ वोकल रेंडिशन इन राग मुल्तानी काफी। नाउ लिसन टू ठुमरी इन राग मिश्र काफी। द वर्ड्स आर ना ही पड़े मोसे चैन, अकंपनीड बाय हशमत अली खान ऑन तबला।

0: अभी आप सुन रहे थे उस्ताद लक्ष्मण सिंधु का गाया राग मिश्र काफी में ठुमरी, और अब सुनिए सूफियाना कलाम। रचना बाबा बुल्ले शाह की है, बोल हैं की जाना मैं कौन।
1: यू वर लिसनिंग टू ठुमरी इन राग मिश्र काफी एंड नाउ लिसन टू सूफियाना कलाम। इट्स कंपोज्ड बाय बाबा बुल्ले शाह। द वर्ड्स आर की जाना मैं कौन।

0: अभी आप सुन रहे थे ये सूफियाना कलाम, और लीजिए अब प्रस्तुत है उस्ताद लक्ष्मण दास सिंधु का गाया राग मिश्र पीलू में उमरी। बोल हैं सैया बोलो मोसे तनक।
1: यू वर लिसनिंग टू सूफियाना कलाम। नाउ लिसन टू ठुमरी इन राग मिश्र पीलू बाय उस्ताद लक्ष्मण दास सिंधु। द वर्ड्स आर सैया बोलो मोसे तनक।

0: अभी आप उस्ताद लक्ष्मण दास सिंधु का गाया राग मिश्र पीलू में ठुमरी सुन रहे थे, और अब सुनिए दादरा। वो है मैंने लाखों के बोल सहे।
1: यू वर लिसनिंग टू ठुमरी इन राग मिश्र पीलू एंड नाउ लिसन टू दादरा। द वर्ड्स आर मैंने लाखों के बोल सहे।

0: उस्ताद लक्ष्मण दास सिंधु का गाया ये दादरा भी आप सुन रहे थे। और अब सुनिए राग मृतिलंग में ठुमरी, बोल हैं अब के सावन घर आ जा।
1: यू वर लिसनिंग टू दादरा एंड नाउ लिसन टू ठुमरी इन राग मिश्र तिलंग। द वर्ड्स आर अब के सावन घर आ जा।

0: उस्ताद लक्ष्मण दास सिंधु का गाया राग मिश्र तिलंग में ठुमरी अभी आप सुन रहे थे। और अब ये दादरा बोल हैं दिल की ये नजर का निशाना हुआ।
1: यू वर लिसनिंग टू ठुमरी इन राग मिश्र तिलंग बाय उस्ताद लक्ष्मण दास सिंधु। नाउ लिसन टू दादरा। वर्ड्स आर दिल की ये नजर का निशाना हुआ।

0: अभी आप उस्ताद लक्ष्मण दास सिंधु का उपशास्त्रीय गायन सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी हशमत अली खान ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: In the program of light music, you were listening to a vocal rendition by Pandit Lakshman Das Sindhu. He was accompanied by Hashmat Ali Khan on tabla. This program is the presentation of All India Radio, Delhi.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel।
1: श्रोताओं नमस्कार, रागम 24/7 कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। सुनते हैं सितार वादन। कलाकार है सहाना बैनर्जी। आपने सितार पर प्रस्तुत किया राग बिलास खनी तोड़ी सुनते हैं। आपके साथ तबले पर है रविंद्र कुमार शर्मा। तो आइए सुनते हैं सितार पर राग बिलास खनी तोड़ी, कलाकार सहाना बैनर्जी।

श्रोताओ, अभी आपने सुना सितार पर राग बिलास खनी तोड़ी। कलाकार थी सहाना बैनर्जी। आपके साथ तबले पर थे रवि कुमार शर्मा। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं सहाना बैनर्जी द्वारा प्रस्तुत सितार पर राग झिनझोटी। आपके साथ तबले पर है रामदास पसुले। तो आइए सुनते हैं सितार पर राग झिनझोटी, कलाकार सहाना बैनर्जी।

श्रोताओं, अभी आपने सुना सितार पर राग झिनझोटी, कलाकार थी सहाना बैनर्जी। आपके साथ तबले पर थे रामदास परसुले। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मित थी। रागम हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग रागेश्वरी में सितार वादन. आज के कलाकार हैं कल्याण जी दास. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं अशोक मुखोपाध्याय. तो आइए सुनते हैं राग रागेश्वरी में सितार वादन, कलाकार कल्याण जी दास.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस इवनिंग वी प्रेजेंट अ हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल रिसाइटल फॉलोड बाय अ हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल. लिसन टू अ सितार रिसाइटल इन द राग रागेश्वरी. आवर आर्टिस्ट इज कल्याणजीत दास. Accompanying him on the tabla is Ashok Mukherjee. Listen now to the rag Rageshri on the sitar. Our artist, Kalyanjit Das.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग रागेश्वरी में सितार वादन सुन रहे थे। आज के कलाकार थे कल्याणजीत दास। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे अशोक मुखोपाध्याय। ये है रागम, 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं माज खमाज दादरा। आज ही कलाकार हैं संजुक्ता दास। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं अरिंदम चक्रवर्ती। तो लीजिए प्रस्तुत है ये माज खमाज दादरा, कलाकार संजुक्ता दास।
1: You were listening to a sitar recital in the rag Rageshri. Our artist was Kalyanjit Das. Accompanying him on the tabla was Ashok Mukherjee. This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. Continuing the concert, we now present a Hindustani vocal recital. Listen to a Maj Khamaj Dadra. Our artist is Sanjukta Das. Accompanying our artist on the tabla is Arindam Chakraborty. Listen now to Maj Khamaj Dadra. Our artist, Sanjukta Das.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप ये माज खमाज दादरा सुन रहे थे। कलाकार थी संयुक्ता दास। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे अरिंदम चक्रवर्ती। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a Maj Khamaj Dadra. Our artist was Sanjukta Das. Accompanying our artist on the tabla was Arindam Chakraborty. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music.

0: सांसद ध्वनि तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्रीमती सात्विका मोहन बिगिन्स हर वोकल रिसेटल विद अ कंपोजिशन ऑफ त्यागराज स्वामी इन द राग हंसध्वनि सेट टू आदिताल।

0: अब आप सुनेंगे त्यागराज स्वामी की एक कृति जो राग आनंद भैरवी तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: यू विल नाउ लिसन टू ए कंपोजिशन ऑफ त्यागराज स्वामी इन द राग आनंद भैरवी सेट टू आदि ताल।

0: श्रीमती सात्विका मोहन अपना गायन जारी रखते हुए अब प्रस्तुत करेंगी नारायण तीर्थ द्वारा रचित एक तरंगम, जो राग बिलहरी तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: कंटिन्यूइंग हर वोकल रिसाइटल, श्रीमती सात्विका मोहन विल नाउ प्रेजेंट ए नारायण तीर्थ तरंगम इन द राग बिलहरी सेट टू आदि ताल।

0: अब आप सुनेंगे मैसूर वासुदेवाचार्य की एक रचना जो राग सिम्हेंद्र मध्यमम तथा मिश्र चापू ताल में निबद्ध है।
1: यू विल नाउ लिसन टू ए कंपोजिशन ऑफ मैसूर वासुदेवाचार्य इन द राग सिम्हेंद्र मध्यमम सेट टू मिश्र चापू ताल।

0: वो था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर विद्वान पीरवली जय भास्कर और घटम पर श्री एम चंद्रकांत ने प्रस्तुत किया।
1: दैट वाज द तन्यावर्तनम प्लेड ऑन मृदंगम बाय विद्वान पीरवली जय भास्कर एंड ऑन घटम बाय श्री एम चंद्रकांत।
0: श्रीमती सात्विका मोहन अपने गायन का समापन श्री कनक दास की एक कृति के साथ कर रही हैं, जो राग सिंध भैरवी तथा खंड चापू ताल में निबद्ध है।
1: श्रीमती सात्विका मोहन कंक्लूड्स हर वोकल रिसेटल विद द कंपोजिशन ऑफ श्री कनकदास इन द राग सिंधु भैरवी सेट टू खंड चापू ताल।

इसी के साथ हम रविवार श्री अखिल भारतीय संगीत सभा में श्रीमती सात्विका मोहन का गायन समाप्त करते हैं। आज की सभा में उनके

0: जय भास्कर एंड ऑन घटम बाय श्री एम चंद्रकांत. दिस कॉन्सर्ट वॉज रिकॉर्डेड एट द स्टूडियोज ऑफ आकाशवाणी हैदराबाद फॉर रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा एंड ब्रॉट टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी.
1: ये आकाशवाणी का इंद्रप्रस्थ चैनल है. अब से कुछ ही देर बाद समाचार होंगे, कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए.
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की. पदक विजेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी. श्री मोदी ने एक वीडियो संदेश साझा करते हुए कहा कि जो खेलेंगे वे आगे बढ़ेंगे और उन्होंने नागरिकों से हमेशा भारत का उत्साह बढ़ाने की अपील की.
3: जो खेलेगा वो खिलेगा. ऑलवेज चीयर फॉर भारत. भारत माता की. भारत माता की.
2: इस मौके पर युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया

आप सुन रहे हैं हिंदुस्तानी ख्याल गायन, कलाकार हैं M.R. गौतम। यू आर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी ख्याल रिसाइटल बाय M.R. गौतम। ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे राग बागेश्री अंग का चंद्रकौंस। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है। बोल हैं बीत गए दिन रैन तुम्हारे कारण। द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है। बोल हैं अथक मन भायो रे। नाउ द आर्टिस्ट रेंडर्स राग चंद्रकौंस ऑफ द बागेश्री अंग।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी ख्याल गायन। कलाकार थे M.R. गौतम। संगत कलाकार थे तबले पर इस्माइल ददोखा और सारंगी पर समद खां। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू लिस्निंग टू हिंदुस्तानी ख्याल रिसाइटल बाय M.R. गौतम। द अकॉम्पनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय इस्माइल ददोखा ऑन द तबला एंड समद खां ऑन द सारंगी। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय All India Radio Bhopal for Ragam 24/7, an exclusive Indian classical music channel.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में सरोद वादन। कलाकार हैं विदुषी जरीन शर्मा, राग है बसंत मुखारी। आप प्रस्तुत कर रहे हैं आलाप जोड़ झाला, तत्पश्चात दो गतें। विलंबित गत रूपक ताल में निबद्ध है और द्रुत गत तीन ताल में। संगत कलाकार हैं तबले पर पंडित रामस्वरूप रतौनिया। दिस इज रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल। नाउ लिसन टू हिंदुस्तानी सरोद रिसाइटल बाय विदुषी जरीन शर्मा। द रेंडेशन कमेंसेस विद द राग बसंत मुखारी। द अकंपनीमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय पंडित रामस्वरूप रतौनिया ऑन द तबला।

आप सुन रहे हैं सरोद वादन, कलाकार है विदुषी जरीन शर्मा। यू आर लिसनिंग हिंदुस्तानी सरोद रिसाइटल बाय विदुषी जरीन शर्मा। ये है रागम पर हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे विदुषी जरीन शर्मा से राग जोग में आलाप जोड़ और छाला, तत्पश्चात विलंबित और द्रुत गत। विलंबित गत झपताल में और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। कंटिन्यूइंग द सरोद रिसाइटल बाय विदुषी जरीन शर्मा, यू विल लिसन द राग जोग।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शैली में सरोद वादन। कलाकार थी विदुषी जरीन शर्मा। संगत कलाकार थे तबले पर पंडित रामस्वरूप रतौनिया। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू वर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी सरोद रिसाइटल बाय विदुषी जरीन शर्मा। द अकंपनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय पंडित रामस्वरूप रतौनिया ऑन द तबला। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो भोपाल फॉर रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल।

0: This is Ragam 247TH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है राजेंद्र सिंह का गाया राग तोड़ी. विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है. बोल हैं लाल मनाए और तीन ताल में निबद्ध द्रुत रचना के बोल हैं अल्लाह जाने अल्लाह जाने. तबले पर आपकी संगति की है नव अली खान ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. We now present for you a vocal recital by Shri Rajendra Singh. He is accompanied on the tabla by Nawab Ali Khan and on the sarangi by Pandit Bharat Bhushan Goswami. Shri Rajendra Singh first presents Rag Todi, in which he sings the Vilambit Khayal set to Ektal. The lyrics are Lal Manaye. This will be followed by a composition in Drut Khayal set to Tintal. The lyrics of this composition are Allah Jane, Allah Jane.

0: अभी आप राजेंद्र सिंह का गाया राग तोड़ी सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति थी नवाब अली खान ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने। और लीजिए अब सुनिए राजेंद्र सिंह का गाया राग अलैया बिलावल। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं दैया कहाँ गए वो लोग, और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है, बोल हैं लाडली लाल फूले आवत। तबले पर आपकी संगति की है नवाब अली खान ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने।
1: That was Raag Todi. Continuing with his vocal recital, Shri Rajendra Singh now presents Raag Alaiya Bilawal, in which he sings first a khayal set to Vilambit Ektal. The lyrics are Daiya kahan gaye wo log. This will be followed by the chota khayal set to Drut Teen Tal. The lyrics are Laadli Lal Phool Aavat.

0: अभी आप राजेंद्र सिंह का गाया राग अल्हैया बिलावल सुन रही थी। तबले आपकी संगति की थी नवाब अली खान ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: विद राग अल्हैया बिलावल वी कम टू द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम विच फीचर्ड अ वोकल रिसाइटल बाय श्री राजेंद्र सिंह। He was accompanied on the tabla by Nawab Ali Khan and on the sarangi, Pandit Bharat Bhushan Goswami. This was a presentation of All India Radio Delhi.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओ नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल पर भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं समर्थ रामदास की भक्ति रचना से, जिसे गाए कुमुदिनी पेड़नेकर ने।

कुमुई पेडणेकर के स्वर में अभी आपने समर्थ रामदास की भक्ति रचना सुनी। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं जयश्री कुलकर्णी के स्वर में संत चोखा मेळा की भक्ति रचना।

जैसे कुलकर्णी के स्वर में संत चोखामेळा की भक्ति रचना अभी आपने सुनी, आइए आप सुनते हैं दीपक देकर के स्वर में समर्थ रामदास की ये भक्ति रचना।

समर्थ रामदास की भक्ति रचना अभी आपने सुनी दीपक पाटेकर के स्वर में। कार्यक्रम ये अब समूह स्वर में सुनते हैं संत भानुदास की भक्ति रचना, जिसके संगीतकार हैं बाल माळी।

संत भानुदास की भक्ति रचना अभी आपने समूह स्वर में सुनी, जिसके संगीतकार थे पाल माली। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं संत तुकाराम की भक्ति रचना सौमिक शाह के स्वर में।

सौमिक शाह के स्वर में संत तुकाराम की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं कुमुद कुलकर्णी के स्वर में संत तुलसीदास ने रची ये हिंदी भक्ति रचना।

कुमुद कुलकर्णी के स्वर में संत तुलसीदास की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं चंद्रकांत काळे के स्वर में संत एकनाथ ये भक्ति।

संत एकनाथ की भक्ति रचना अभी आपने सुनी चंद्रकांत काले के स्वर में। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना संत तुलसीदास की, जिसे गाया है आरती ठाकुर ने।